0: चार चार घंटे ला देनी है तैयार होने लगे कदे ता छेती तैयार हो जाया कर। एक मेरे साले ने घर रब दियां जड़ां च पार खाया तेनू पता नहीं लगता छेती तैयार हो जा माड़ा मोटा मैं
1: खुद दी वाला माल नहीं वेख्या जांदा किन्ना टाइम लाउंदे
0: की किन्ना टाइम लाउंदा 6 घंटे हो गए तेनू तैयार हुंदी नू।
1: अच्छा ए दसो मैं सोहनी लग रही है ना?
0: आहो बहुत सोहनी जमा हूरपरी लगदी सोहनी दी।

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: Sangeet.
3: रूदी खुराक है,
2: आत्मा दी आवाज है,
3: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है।
3: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है,
3: जिंदगी सांझ है, खिमा है,
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है।
3: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
2: कल्चर ऑफ पंजाब।
3: कल्चर ऑफ पंजाब
4: चाहे हम किसी जगह या इंसान को ब्लेम करें या कोई भी रीजन दें या बहाने बनाएं, सच बात यह है कि सिर्फ बुजदिल लोग अपने सपनों को परस्यू करने से डरते हैं। और ये सब जो ब्लेम गेम है ना, ऐसे ही लोग खेलते हैं, उन्हीं के मन की उपज है ये। नमस्कार, आदाब सामीन, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब हैप्पी और कंटेंट हैं, मैं प्रीत चाहूंगी इजाजत आज के शो की शुरुआत करने की जिग जैगलर्स की लिखी एक बेहद ऑप्टिमिस्टिक थॉट के साथ। जिग जैगलर एक मोटिवेशनल टीचर और ट्रेनर थे जिन्होंने दुनिया भर में ट्रैवल किया, डिलीवरिंग हिज मैसेजेस ऑफ ह्यूमर, होप एंड एनकरेजमेंट। उनका मानना था कि हम लोग अक्सर कामयाबी की बात करते हैं, पर कामयाबी है क्या? इसको किस यार्डस्टिक के साथ मेजर किया जा सकता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम कामयाबी करने में है, पाने में नहीं है, कोशिशें करने में है, जीतने में नहीं है। सक्सेस को नापने के लिए कोई गैजेट नहीं है, क्योंकि कामयाबी और कुछ नहीं, एक पर्सनल स्टैंडर्ड है। रीचिंग आउट फॉर द हाईएस्ट दैट इज इन अस एंड बिकमिंग ऑल दैट वी कैन बी। और अगर किसी भी काम में, चाहे प्रोफेशनली हो या होम फ्रंट पर हो, हमने अपना बेस्ट दिया तो हम कामयाब हैं, एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्स इन द एंड। ओके, टाइम टू मूव ऑन। और अब बात करते हैं आज की तारीख की, यानी 13 मई की। आज ही की तारीख को 1648 में दिल्ली में लाल किले की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई थी। 13th of May 1861 को पाकिस्तान, जो उस समय एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, उसने अपनी पहली रेलवे लाइन ओपन की थी फ्रॉम कराची टू कोटरी। 13th of May 1939 को पहले कमर्शियल एफएम रेडियो स्टेशन का लॉन्च हुआ था ब्लूमफील्ड कनेक्टिकट यूनाइटेड स्टेट्स में। बाद में ये स्टेशन का नाम रखा गया था WDRC FM। आज की तारीख को 1952 में अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी राज्यसभा ने होल्ड की अपनी पहली सिटिंग। अपार्ट फ्रॉम इट, 13th of May 1967 को डॉक्टर जाकिर हुसैन बन गए थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूनियन। उन्होंने अपना ऑफिस संभाला August 24th 1969 तक। साथ ही साथ आज की तारीख को 1998 में भारत ने कैरी किए पोखरान में दो न्यूक्लियर टेस्ट फॉलोइंग द थ्री कंडक्टेड ऑन द 11th of May अर्लियर। साथ ही साथ 2008 में जयपुर में बॉम्बिंग्स भी आज ही की तारीख को हुई, जिनका रिजल्ट था डजन्स ऑफ डेथ्स। 13th of May 2011 को दो बॉम्ब एक्सप्लोजन्स हुए पाकिस्तान में भी, किलिंग 98 पीपल एंड वोडिंग अराउंड 140। इसके अलावा आज यानी 13 मई को जन्मदिन है इंडियन सिंगर बेनी दयाल का और श्रीलंकन क्रिकेटर दिलशान का।

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: अच्छा, अगर हम एवरेज 70 साल तक जीते हैं तो आपको पता है कि अपनी लाइफ की डिविजन कैसे होती है? करीबन 25 साल तो हम सोकर गुजार देते हैं, 8 साल पढ़ाई करने में, 6 साल आराम करने में या यूं कहें कि बीमारी में, 7 साल टीवी देखते हुए या हॉलिडे पर, 4 साल खाने में, 5 साल सड़कों पर, घर से काम, काम से फिर वापस घर। तो बचे कितने? करीबन 12 साल। सिर्फ 12 साल, यही टाइम, यही साल है जिसमें खूब सारी मेहनत करनी है हमें, और अगर ये टाइम भी हाथ से गवा दिया हमने, देन डोंट यू थिंक वी हैव लॉस्ट नियरली एवरीथिंग? वेल, सोच कर देखे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट जिसे शेयर किया मैंने यानी प्रीत ने आपके साथ आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में।

0: ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ
4: अच्छा जब आप और हम कॉलेज पास आउट करते हैं ना तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा टारगेट होता है जॉब ढूंढने का. कई बार हमें एक बहुत बढ़िया जॉब मिल भी जाती है बट स्टिल एक क्वेश्चन मार्क सैलरी इतनी कम क्यों. पर ना एक बात हमेशा याद रखें कि एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर व्हाट यू लर्न इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू अर्न. जो आपने अपने करियर की शुरुआत में सीखना है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि आप अर्न कितना कर रहे हैं उस टाइम. तो जी इसलिए एक्सपीरियंस गेन करें काम को दिल लगा कर सीखें तो सैलरी नहीं तो खुद ब खुद पीछे आ जाना है.

0: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: जब तक आप ये यकीन नहीं करते कि जौन सा काम आप कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे बढ़िया काम है, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। और इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा टिप है। अच्छा, ऐसा करें, दिल को अपने काम में बसा लें और काम को अपने दिल में, फिर देखें रिजल्ट कितना कमाल का होता है। मेरे को पता है कि आपने ऐसे तो मानना नहीं है, चलो ट्राई कर लें, हर्ज भी कोई नहीं है।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: कुछ दिन पहले मैंने पेपर में हमारी फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर और मैगसे अवार्ड विनर किरण बेदी का एक आर्टिकल पढ़ा जो खास कर पेरेंट्स के लिए था एंड वेरी स्पेशली फॉर द पेरेंट्स ऑफ डॉटर्स बेटियों के माँ बाप के लिए। उसमें एक बहुत टचिंग सी बात लिखी हुई थी कि जब भी किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो आंखें खोलते ही अपने माँ बाप से अपने दादा दादी से नाना नानी से सबसे एक ही सवाल पूछती है Am I welcome in the family? क्या मैं आपका गुरूर हूँ या आप पर बोझ हूँ? और ये पेरेंट्स ही हैं जो उसे सहारा दे, उसकी ताकत बन सकते हैं आगे बढ़ने में अच्छी एजुकेशन देकर। किरण बेदी कहती हैं कि वो एक छोटे से शहर अमृतसर से हैं, जहाँ जरूरत है उनके अपने पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स की हजारों लाखों की संख्या में, जो खासकर अपनी बेटियों की एजुकेशन पर इन्वेस्ट करें और उन्हें समझा पाएं कि किताबें सोने चांदी की ज्वेलरी से बहुत ज्यादा कीमती है, जो उन्हें ऐसी जिंदगी दें कि फिर कोई बेटी ये दोबारा न कह सके कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजिए।

एजुकेशन की बात हो, तालीम की बात हो और किताबों का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। किताबें कागजों पर जिंदगी के मायने छपे हुए, किताबें जो हमें सलीका सिखाती हैं जिंदगी जीने का। और कोई आपके साथ हो ना हो, किताबें हमेशा आपका साथ देती हैं। उदास हो तो खुश कर देती हैं, घर के एक छोटे से कमरे में बैठे बैठे दुनिया की सैर करा देती हैं। अच्छा, अप्रैल में बीबीसी बिग रीड ने एक सर्च शुरू की बेस्ट लव्ड 100 नॉवेल्स की। द वन विच वॉज मोस्ट लव्ड वॉज द लॉर्ड ऑफ रिंग्स। दूसरे नंबर पर जो किताब सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है आज भी यूके में, वो है जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन 100 किताबों में की जो लिस्ट है उसमें से हमारे इंडियन राइटर्स भी पीछे नहीं है। नंबर 55 पर स्टैंड्स टॉल विक्रम सेठ्स बुक अ सूटेबल बॉय, एंड एट नंबर 85 इज अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ

पुहपसुगंधा परस मानुख देहं मलीणं मज्जा रुद्र दुर्गंधा नानक अथगर बेण अज्ञानन परमाणु पर जंत आकाश दीप लो से खंडन गशेण नैन पारेण नानक बिना साधु ना सिद्ध्यते जानो सत होवन तो मरनो दृष्टेण मिथ्या कीर्त साथ चलंथो पढ़ंत नानक साध संगेण माया चित परमेण इष्ट मित्रेख बांधव लब्ध्यंग साध संगेण नानक सोख्य स्थानं गोपाल भजनं लब्ध्यंग साध संगेण नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैलागर संगेण निम बिरख से चंदन है निकट बसंतो बांसो नानक अहं बुद्ध ना बोहते गाथा गुंफ गोपाल कथं मथंग मान मर्दन है हतंग पंच सतरेण नानक हर बाणे परहारण बचन साध सुख पंथा लहंथा बड़ कर्मण अरहंता जन मरणेन रमणंग नानक हर कीर्तन पत्र पुर जेण चढ़ियंग नह जड़ियंग पेड़ संपता नाम बिहूण बिखमता नानक बहंत जोन बस रो रैणी पावनी साध संगेण लबंतंग बड़ पागण हर नाम गुण रमणंग नानक संसार सागर ने व्यापण गाथा गूढ़ अपारंग समझणंग बिरला जन संसार काम तजणंग नानक गोबिंद रमणंग साध संग में सुमंत्र साध बचना कोट दोख बिनासन हर चरण कमल ध्यानंग नानक कोल समूह उदाहरण सुंदर मंदर सैण जेण मद हर कीर्तन मुक्ते रमण गोबिंद नानक लभद्यंग बड़ भागण हर लभदो मित्र सुमितो बिदारण कदे ना चित्तो जा का अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो अबज संग मिटंत सत पुत्र है सिमरतबर दै गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण मरणंग बिसरणंग गोबिंद जीवणंग हर नाम त्यावण लबणंग साध संगेण नानक हर पूर्व लिखण दसन बिहून पुयंगंग मंत्रंगारड़ी निवारंग व्याद्योपण संतंग नानक लब्ध कर्मण जथ कथ रमणंग शरणंग सर्वत्र जियण तथ लगणंग प्रेम नानक प्रसादंग गुरदर्शन चरणार बिंद मन विद्यंग सिद्ध्यंग सर्व कुशलण गाथा गावंत नानक पब्यंग परा पूर्वण शुभ बचन रमणंग गवणंग साध संगेण उदरण संसार सागरंग नानक पुनरप जन्म ना लभ्या ते वेद पुराण शास्त्र विचारंग एकंकार नाम उरतारंग कुल समूह सगले उदारंग वडपागी नानक को तारंग सिमरणंग गोबिंद नामंग उदरणंग कुल समूहण लब्ध्यंग साध संगेण नानक वडभागी पेटंत दर्शन सर्व दोख परंग त्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतण लब्धेण साध संगेण नानक मस्तक लिखण होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सत्म जानो नानक प्रीत कारण सुखैण बैन रत्नंग रचनंक सुंबरंगण रोग सोग बेयोगं नानक सुख ना सुपन फुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाथ कलम या गम मस्तक लेखावती उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूपावती
ਉਸਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਖੋ ਤੁਹਾਰੀ ਆ, ਮੋਹੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਆ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਮੈਂ ਬੈਸ ਕੇ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਅਰਪੀ ਸਭ ਸਿੰਗਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇਵਾ। ਆਸ ਪਿਆ ਸੀ ਸੇਜ ਸੋਕੰਤ ਵਿਛਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਂ ਮਸਤਕ ਹੋਵੇ ਭਾਗ ਤਾਂ ਸਾਜਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਲ ਸਭੈ ਕੇ ਸਾਜਿਆ, ਸੋ ਲੈ ਕੀਏ ਸਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਜਨ ਪਾਜਿਆ। ਜੇ ਘਰ ਆਵੇ ਕੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਂ ਕੰਤੈ ਬਾਜ ਸਿੰਗਾਰ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ

प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत चरण कमल मन बेदियो बुझन सुरत संजोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर शाए बिंदे बांदे कमल मैं पवर रहे लपटाए जाप तप संज महरख सुख मान महत्यार गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म ना जान नहीं मर्त हिरत संसार प्रेम परम ना बेदेओ उर्जो मिथ व्यवहार कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल जा को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहू जाहे लख काटी ऊंचो कनो चंचल चीत बेहाल नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार मगन पयो प्रे प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग सलोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम आज जुगा दी सगल भगत ता को सुख विश्राम कबीर मेरी जात कहो सब को हसने हार बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ दिसै दांदे कान ज्यो जिन मन नाही नाओ कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए निरपय होए कै गुण रवै जत पेखों तत सोए कबीर जा दिन हो मुआ पाछै पया आनंद मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए पलो पलो सब को कह बुरो न मन कोए कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत लह फाहे उठतावते से जान मारे भगवंत कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़े उठाग पलास ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया यों मत डूबो कोए चंदन कह निकटे बसे बांस सुगंध ना होए कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ कबीर जय जय हों फिर ओ कौतक ठा उठाए एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ आग लगो तह तौल हार।

करते हुए सो होए। कबीर बैसनो की कुकर भली सागत की बुरी माए, ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर करै पीवै निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया।

0: पयो कबीर कबीर। कबीर सुपने हूं बरड़ाए कै जे मुख निकसै राम, ताके पग की पानी मेरे तन को चाम। कबीर माटी के हम पूतरे मानस राख्यो नाओ, चार दिवस के पाहुने बड़ बड़ रूंदे ठाओ। कबीर मेहंदी कर कहले आया पीसाए पीसाए, तै सह बात ना पूछिए कब हो ना लाई पाए। कबीर जे दरियावत जाते हो हटके नाही कोए, सोदर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए। कबीर डूबा था पै उबरियो, गुण की लहर चबक जब देखियो बेड़ा जर्जरा, तब उतर पर्यो हाँ फर्क। कबीर पापी भगत ना पावई हर पूजा ना सुहाए, माखी चंदन पर हरै जय बिगंतै जाए। कबीर बैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सब संसार एक कबीरा नाम हुआ जे नाही रोवनहार। कबीर राम ना त्यायो मोटी लागी खोर, काया हांडी काठ की ना उचरै बहोर। कबीर ऐसी होए परी मन को पावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हास्य दौरा लीन। कबीर रस को गंडो चूसिए गुण को मरिए रोए, अब गुण यारे मानस है पलो न कह है कोए। कबीर गागर जल परी आज काल जय है फूट, गुर जो नाचे तय अपनो अध माज ली जय गे लूट। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जय खिंचै तै जाओ। कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावै लोए, हृदय राम ना चेत ही ये जपनी क्या होए। कबीर बिरों पुजंगों मन बसै मंत ना मानै कोए, राम बियोगी ना जिए जिए तां बौरा होए। कबीर पारस चंदन है तिन है एक सुगंध, तेह मिलते ऊ तुम पहे लो काठ निर्गंध। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओ नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोह मिले ओ तिन लिया अंचल लाए। कबीर बैद कहे हाँ ही भला दारू मेरे वस, ए तो बस्त गोपाल की जब पावै लेखस। कबीर नौबत अपनी दिन दस लिहो बजाए, नदी नाव संजोग ज्यो बौर न मिल है आए। कबीर सात समुंदे मस करो कलम करो बन राए, बसदा कागज जो करो हर जस लिखण ना जाए। कबीर जात जुलाहा क्या करे हृदय बसे गोपाल, कबीर रमैया कंठ मिल चूकै सर्व जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदिर दे जराए, पांचो लड़के मार कै रह राम ल्यो लाए। कबीर ऐसा को नहीं एहो तन दे वै फूक, अंधा लोग ना जान नहीं रहो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारै चहे चढ़ी सुनो वीर मसान, लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दे दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तै सो फल खाए।
1: सर्व सांझी गुरबाणी प्रोग्राम दे स्पॉन्सर हन टॉप लिंक लोन एंड लीजिंग। तुहाडा ट्रक ट्रेलर दा लोन कितों नहीं हो रहा, जां तुसी यूज्ड ट्रक खरीदने हन ते सानू कॉल करो 204-480-9600, जां ऑनलाइन विजिट करो toplinkfinancial.com।